0: सुनत ना, आइए हम लोग आनी में 8 बजे के छ
1: इस समय को साथ में जितु सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ। 105.4।

0: सुमित ना, अले हम लोग आने में 3 बजे
1: ए समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4
3: रेडियो आदि खोला 105.4